0: यानी 4035544444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहाजी दे ऑफिस का पता है, यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकदे हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

एक बार फिर तुहाडा स्वागत है गुरबाणी विचार प्रोग्राम के इस हिस्से दे विच। आपां इस तो पहला कल जिहड़ी विचार आपां कीती सी उह सरवण कर रहे सी, जब तक धर्मां विच पाप पुन दी विधि है लोग पाप करदे ही रहणगे। इसे सिलसिले का जिहड़ा अगला विचार आपां कर रहे हां इहदे नाल संबंधित कि दान पुन ते पूजा पाठ नाल रब माफ कर दिंदा है, क्योंकि जे असीं इह कहीए कि पाप करके ते फिर जिस तरह कल ही आपां इह कहिआ सी कि एक कॉन्सैप्ट है बनिया होया जिस नूं कि गुरबाणी ने रद्द कर दिता कि तुहाडे जिन्ने भी पाप ने तुसी तीर्थां ते इशनान करो, तुहाडे पाप जिहड़े आ उह सब धोते जांदे आ। ते गुरमत ने इस नूं किस तरह रद्द कीता आपां कल विचार कीती है, भावें पूरी क्योंकि अद्धे घंटे दे समें जां 25 मिनट दे समें दे विच कई बार पूरा जिहड़ा विचार है वह जस्टिफाइड नहीं हुंदा, फिर भी किते ना किते कोशिश कर रहे अपनी समझ दे मुताबक कि आपां इस ते विचार करिए। जे बाद दे विच भी किसी वीर ने इस ते विचार करनी होवे तां उह संपर्क कर सकदे आ फेसबुक राही भी, फोन करके भी, ते आपां उस विचार नूं भी जिहड़ा इत्थे ब्रॉडकास्ट करांगे। जे तां आपां इह मन के तुरदे हाँ कि अकाल पुरख रब बहुते दान दित्या उहदी पूजा करिया माफ कर दिंदे ने, कोर पाप कोर अपराधी दुनिया नूं सताया होया होवे, तां फिर इसका मतलब आ कि अमीर लोग जिन्ने मर्जी पाप करन, जिन्ना मर्जी गरीबां ते तशद्दद करन, रब तां लालची है ते उसने उहनां दे दान पुन नूं देख के, उन्हां दी पूजा अर्चना नूं देख के, उन्हां दे पाठां नूं देख के उस नूं माफ कर देना है। फिर तां इही बिरती जिहड़ी कि इशनान दे नाल जुड़ी हुई है उही बिरती इहदे नाल जुड़ी हुई, जिस तरह आपां जपजी साहिब दी दूजी पंक्ति दा जिक्र करदे सी, चुप है चुप ना होवई जे लाहे राह लिवतार, क्योंकि मन दी शांति आ ही नहीं सकती जे समाधि ला के भी बंदा बैठ जाए। असल दे विच इहो जे जिहड़े कॉन्सैप्ट ने इन्हां नूं गुरमत ने मूलों ही रद्द कर दिता है। गुरबाणी दे विच गुरु नानक पातशाह फरमाउंदे ने, ना भीजै रागी नादी बेद, ना भीजै रागी नादी बेद, ना पीजै सुरती ज्ञानी जोग, ना पीजै जोगी कीते रंज रो, ना पीजै जोगी सोगी कीते रोग, ना पीजै रूपी माली रंग, ना पीजै तीर्थ पवियै नंग, ना पीजै दाती कीते पुन, ना पीजै बाहर बैठिया सुन, ना पीजै पेड़ मरै पिर सूर, ना पीजै किते होवै तूड़, लेखा लिखिए मन के पाए, नानक पीजै साचे नाहीं। सच्चे ज्ञान नूं जदों प्राप्त कर लैंदे हां तां उह मेहरवान हो जांदा है, होर जिन्ने भी कर्म ने इन्हां दे नाल उहदा, क्योंकि जिहड़ी प्रकृति दे नियम नहीं बदलते, प्रकृति दे नियमां दे विच जदों असीं देख रहे हां जिस तरह बाणी दे विच जिक्र आंदा है, जिस तरह

ऊपर सच अचार। गुरमत ने बोधा बल जड़ा दिता है मनुख नू सच्चे आचार ते दिता है, सच्चे किरदार ते दिता है। ते जे किरदार वाल जावांगे इन्हां छोटियां छोटियां जिहड़ियां आपां कर्मकांडी जिहड़ियां गल्लां ने इन्हां वाल तो अपने आप नू परहेज करांगे तां ही चंगे इंसान बन सकदे आ। आओ चंगे इंसान बनिए ते फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

जिह सिमरत गन का सी उदरी ताको जस उर धारो मान रे प्रभ की शरण बिचारो जिह सिमरत गन का सी उदरी ताको जस उर धारो रहाओ।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी विखे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे प्रकाश मान हुंदे आ आए अज दे पावन हुक्म नूं। इस समय आप जी ने गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल श्री अमृतसर साहिब धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चरण छो अस्थान तो प्राप्त कन्ना राही कीता। साहिब दी रहमत बख्शिश बन आई तमाम संसार नूं एक ऐसा मुख वाक बख्शिया जिस नाल भुलिया भटकिया दुखिया विछड़िया अपना कुराहे राह दूर करके भुलिया भटकिया अपने दुख दूर करन दा राह प्राप्त करके मेरे साहिब दे उपदेश नाल जिंदगी नूं आनंदित बना सकदा। आओ साहिब दी सीस लईए। मेरे मालिक रहमत करन बहुत लोड़ है कि मन टिक जाए गुर शब्द नाल श्रद्धा विच पर जाए अते एक भावना रखे जो सुनिया उनु कमाउना जो सुना कमावे सो उतरा पार इनु संग्रह करना बुद्धि विच। आओ साहिब रहमत करन शब्द नू विचारिया भी जा सके इस विच एकाग्रता भी बने इस विच श्रद्धा भी बने ते शब्द दी विचार नू धारण करन वाली बिरती भी बन आए। साहिब रहमत करन आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो।

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
1: 1094 अंग ते यह मारू की दूजी बार आरंभ हो रही है, जो कि पंचम पातशाह जी दे उचारण किते बोल ने। मारू वार महला पंजवां, दखने महला पंजवां। यह विद्वाना की खोज भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा वाले खोजे है, भी गुरु नानक पातशाह जी का जिस अस्थान ते आगमन होया उस अस्थान नू केंद्र मन के उस तो जेड़ा दखन का इलाका पैंदा है वो मुल्तान साहू सिंध इलाका पैंदा है। उस इलाके दी भाषा विच ए पावन दखने यानी दखनी भाषा दी ए पावन बोली जो सतगुरां ने इत्थे ज्यादातर दद्दे दी थां ते डड्डा वरत्या गया। ध्यान च रखियो ते साहब जी ने ए दखने महला पंजवां विच जो पावन वार उचारण कीती है आरंभ विच हजूर सारिआं नूं इक ओंकार नाल जोड़ते ने। एक ओंकार ओ तमाम ब्रह्मांड दा मूल है। बड़ी वड्डी एक गल ए है, अनेकां संसार दे जीव जंतु पैदा करके आप एक है, अनेकां दे अंदर निवास करके आप एक है। सूरज एक है, करोड़ां घरे पानी दे भर के रख दीजिए सब अंदर प्रतिबिंब पैंदा पर सूरज एक रहिंदा है। चंद्रमा एक है, हब समानी जोत जो जल कटाऊ चंद्रमा कटाऊ घड़िया दे अंदर जिमें चंद्रमा। देखो असी कहने ना मेरे अंदर भी जोत तेरे अंदर भी जोत, हुण जोत ते सब मैं जोत जोत है सोए। हुण करोड़ां जीव मनुख ही नहीं पशु पंछी कीड़े मकौड़े सब अंदर जोत है, पर कमाल दी गल ए है करोड़ां अंदर जोत है पर आप करोड़ां नहीं, एक है। एक है अनेक है फिर एक है, वो एक ओंकार है जो सतगुर प्रसाद सतगुरु जी की कृपा नाल जानिया जाता है जी।
0: तू चाओ सज्जन मंडिया डेई सिस उतार।
1: तू चाओ सब चवो मुखों, इथे चाओ दे अर्थ ने कहो बोल। ए मेरे सज्जन तू बोल ना, कारण कवन अबोल। की कारण हो गया तू बोलता नहीं है, बोलना। तू चाओ सज्जन मैडिया, तू मैडा सज्जन है मेरा मित्र है। देखो असां भरावां नाल गल कीती, पति नाल पत्नी नाल बाप नाल संसार नाल दोस्तां मित्रां नाल, कदी रब नाल गल करदिआं आखीए भी ए मेरे मालिक तू मैनू कुछ कहो ना बोलना मेरे नाल। हकीकत पता की है, एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई। जिमें दो भरा इको कर रहन पर गलबात ना करन आपस, पति पत्नी रहन इकट्ठे पर गलबात ना करन। धन फिरका एक ही संग वासा, अंदर मैं भी हां अंदर तू भी है, जीव भी है आत्मा भी है, पर असी रहंदे इकट्ठे हां पर गल बाहर ते सारिआं नाल करदे हां, पर कदी रब नाल भी गल कर लईए। मैं बेनती करा जिंदगी दा नक्शा बदल जाएगा, कदी अकेले बैठ के कदी कह लेना मालिक तू बोलना तू कुछ कहो ना तू आख ते अंदरले आपे चो अजपा जाप चल पए ते अंदर दी सुरत विच हुण वाहिगुरु बोले। ओ ना समझना भी मैं बोलदा हुण वाहिगुरु आप अंदर पिया बोलदा है। तू चौ सज्जन मैडिया देई सिस उतार। देई इथे है जिमें अर्थ करांगे ते देई उथे देई नू डड्डा दखनी भाषा ना ते देई सिस उतार। मैं अपना सीस उतार के भेटा कर दिया, तू आख ते सही ना मैनू। मैं बेनती करा किस ढंग नाल रब दी नेड़ता करदे आ। मेरे साहिब जी ने गल कराई है जी,
0: नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार।
1: महिंजे मेरे नैण तरस दे ने, नैन तरसन दर्स परसन, नह नींद रहन विहानियां। मेरियां अखां तरस दियां, मालिक दी आना मेरियां अखां सामने आ, मैं तेरे दर्शन कर सकां। कद पसी दीदार, मैनू तेरा दीदार कदों होवेगा। दीद ने दीदार साहब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवतगार तू इतना पाक है, तू इतना परवतगार है, तू खुद खसम अपना मालक आप है। वड्डा अतोल तेरा किसे संसारक पदार्थ धन संपदा नाल बराबरी कर दिया, तेनू तोलिया नहीं जा सकता गा। ऐ मेरे साहब बख्शिश करना, इन्हां अखां दे नाल मैं कदी तेरा दीदार कर सकां। ते मैं एक बेनती करांगा, अखां नाल दुनिया ते बहुत वेखी है, तरह तरह दा संसार वेख्या, अखां रजियां नहीं होर भुखियां हुंदियां गईयां। अखी वेख ना रजियां बहु रंग तमाशे, पर मालक कदी तेरा दीदार हो जाए ते मैं तेनू घट घट विच वेख सकां। ते फिर जो दिसै सो तेरा रूप, अज रूप वेखदे हां पर तेरा रूप नहीं वेखदे। मालक तू रहमत कर, ये मेरियां अखां तरसदियां ने कि कदी तेरे दर्शन कर सकां।
0: महला पंजवा,
1: इत्थे हजूर दूसरा श्लोक उचारण करदे हां, फुरमान करदे हां।

0: तऊ नाल मेरा हिरदा मेरा आपा मेरी सुरत तेरे नाल प्यार पाई बैठी है। मैं ये वेख लिया जे तेरे नाल प्यार होवे रब जी जे मेरा तेरे नाल नहीं होवे ना ते मैनू फिर दूजा पासा देखदा है भी ब्याह ए दूसरा नेहो कूड़ावे देख ए जिन्ना दुनिया दा प्यार सारा ही झूठ है। प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख सो ही जग फांदियो को काहू को नाही सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहू दिस घेरे बिपत परी सब ही संग छाड़त कौन आवत नेरे ए दुनिया दा सारा नेहो झूठ है। नानक कचड़िया से तोड़ ए कच्चे ने ए ज्योंदे ही विछड़ जांदे ने। इस करके मेरे साहब कहंदे ने मैं तकिया भी मालिक तेरे नाल प्यार पै जाए तू एक बारी बांह फड़ लै तू कदी बांह छड़दा नहीं तू लोक विच भी सहारा बनदा तू परलोक विच भी मेरे नाल जांदा। इस करके मेरे साहब कहंदे ने मैं तेरे नाल प्यार पाया ते बाकी सारा दुनिया दा मोह नेहो मैनू झूठा नजर आया जी।
1: कपड़ भोग डरावणे जिचर पिरी ना देख
0: सुंदर कपड़े वधिया वधिया स्वादु पदार्थ खान वाले कपड़ भोग मैं बेनती करा ये जिन्ने भी ने सारे डराउने ने कदों सानू ते डराउने नहीं ना लगते सानू तो वधिया कपड़े मिल जान ते बड़ा चा जिहा लगता सवादु पदार्थ खान नू मिल जान ते बहुत चंगे जे लगते ने पर जिन्ना अंदर रब का प्यार पै गया ना अंदर रब का बिरहा पैदा हो गया वो कहंदा भी जिचर पिरी ना देख मैं जिन्ना चिर अपने पिर मालक नू देख के ये वेख नहीं लैंदा उन्ना चिर मैनू दुनिया दे आ कपड़े आ भोग पदार्थ ये सारे डराउने लगते ने इन्हां विच कोई सुख नहीं है कोई शांति नहीं है। एवें थोड़ी देर दे लई इन्हां पदार्थां दे नाल मन पतीजदा हा हा करत बिहानी अवदा तां मैं संतोख ना पाया ये सारी मनोरंजन की माया। मैं बेनती करा अज लोग मनोरंजन लभदे ने हजूर कहंदे ने मन रंजन रंजन दे अर्थ ने मन दी खुशी जिस नाल मन खुश हो जाए लोग तरह तरह दे ढंग तरीके खोजदे ने आओ चंद पल दियां खुशियां लभिए। मेरे साहब कहंदे ने भलिया तू चंद पल दियां तू घंटे दो चार घंटियां दियां तू दो चार दिनों दियां खुशियां की लभदा आ मैं तैनू सारी जिंदगी दियां खुशियां तेरी झोली विच पैंदा सत खुशियां कीर्तन जप नाम लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे ते जे करके उस मालक दे दर्शन दीदार नहीं ते ए कपड़े ते भोग पदार्थ ए सारे डरावने ही हां जी।
1: महला पंजवा
0: इत्थे हजूर तीसरा श्लोक उच्चारण करदे आ धन गुरु अर्जन देव जी फरमान करदे हां जी।
1: उठी झालू कंतड़े हौ पसी तौ दीदार
0: झालू दे अर्थ ने अमृत वेला चा लागे उठ नाम जप उठी झालू मैं अमृत वेले उठ बैठी ए जिंद अमृत वेले जाग पई किस वास्ते अपने कंत वास्ते उठी झालू कंतड़े हम पसी तौ दीदार मैं अंदर आपा अमृत वेले जाग के वाहिगुरु वाहिगुरु करन बैठ गया तेरे दीद हो जान तेरे दर्शन हो जान। भाई नंद लाल जी नूं पुछिया तुसी कहंदे हो गुरु तीर्थ है ते लोग तीर्थां ते जांदे ने जाके कोई सौं खांदे ने मैं आ छड्या तीर्थ ते आया तुसी गुरु तीर्थ ते आके कोई सौं खाधी कहंदे हां कहंदे की सौं खाधी कहंदे मैं सौं खाधी अज तो बाद अमृत वेले दी नींद हराम कर दित्ती बेदारी अस्त जिंदगी है अरफाने शौक गोया हराम करदम आज आइंदा ख्वाबे सुबह आज तो बाद आइंदा मैं ख्वाब सुबह नहीं लेवांगा मैं सुबह नींद दी गोद विच नहीं जावांगा मैं सुबह गुरु दी गोद विच जावांगा। ਉੱਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਚੂਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੱਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਉੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਿਰਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਬੀਜ ਕਰੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਬੀਜ ਤੇ ਅੰਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਤਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੱਤਾ ਕਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਵੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਬਸ ਉੱਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਹਉ ਪੱਸੀ ਤੋ ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ
1: ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਕਮੋਲ ਰਸ ਬਿਨ ਪਾਸੇ ਹਬ ਰਸ ਸ਼ਾਰ
0: ਬਾਕੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਹ ਨੇ ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤਮੋਲ ਸਭੈ ਕਿਸ ਸਾਜਿਆ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈਆ ਹਰ ਹਾਂ ਕੰਤੈ ਬਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਵਿਰਥਾ ਜਾਈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਕਜਲੇ ਇਹ ਹਾਰ ਇਹ ਤਮੋਲ ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों गैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ई प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशन्स तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले, तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-200

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6660 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज़ दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stanford

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

मन मह चितवो चितवने, उदम करो उठनीत। हर कीर्तन का आहरो, हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मी।

0: तुमस तुझ बोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूर्त आजुनी साहिब हंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक महले पहले के लिखे टुंडे अजे की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने

और हिकमत हुकम खवार पौड़ी नदर करे जे अपने ता नदरी सतगुर पाया जवात जम परमया ता सतगुर शब्द सुनाए सतगुर देवड़ दाता को नहीं।

0: सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
1: बड़ी नजर कहे जे अपनी तो नजरी सतगुरु पाया एह जियो को ते जन्म भ्रमया तो सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुरु मिलया।

आप चढ़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम नरपाओ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार ओलू चरखा चक्की चक थलवा रोले बहुत अनंत लाटू मदानिया अनगा पंकी पाउंदियां लै नसा सूए चढ़ पवाइय जंत नानक पौंदा गंत नयंत बंदर बंद पवाए सोए पाया किरत नचे सब कोए नाच नाच हसे चले से रोए उड़ना जाही सिदना होए नचन कुदन मन का चाहो नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी न उतरंतर है नाए लय नरक न जाइय जी उपन सब तिसदा देखा जय आख गवाइय जे लोड़ चंगा अपना पर कुनो नीच सदाइय जे जरवाना पर हर जर वेस करें दी आइय को रहना परिये भाईये पंथ दसावा नित कड़ी मुंद जोबन।

मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हम मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे।

सो पल के उठ हर नाम ते आवे गुर सतगुर का जो सिख अखाए गुर सतगुर का जो सिख

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सत्संसा कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहा कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खाप हुए खा।

0: सुख रोग पाया जा सकता न होई, तू करता करना मैं नाही, जाहु करी न हो बलहारी, कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिसवालियो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किश करना सो कर रहया महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है।

0: गावे गुण परन चार खड दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावे गुण शेष सहस जे बरस आद अंत लेवला तुना गावे गुण महादेव बैरा के जिन ध्यान निरंतर जान्यो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो राज जोग मान्यो बस्यो अंदर वैर रिदंतर सृष्टि सगल उदरे नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जिन काद जुगे लक तन तन गुर तन जन्म सिक्यत पलो जक पाताल पुरी जयकार तुन पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल खाने हो हर नाम रसिक नानक गुर राज जोग ते मान्यो पाताल पुरे जयकार तुन कब जन कल बखान्यो हर नाम रसिक नानक गुर राज जोग ते मान्यो
1: सतयुगता मान्यो बस सतयुगता मान्यो चलियो बल बावन पायो चरित तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भक्ते जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत माज सोध जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किनकनी सबत चनत्कार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ को कौन मेट सके ईश बम ज्ञान ध्यान तत ये चाहे जियो सत सात श्री निवास आज पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
2: गुण गावे रविदास भगत जय दे तरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ और न जान सुख दियो परे खत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गौर नित नव तन जायो सुख दियो परे खत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गौर नित नव तन जग छायो
3: गुण गावे पायाल भगत लगाद भयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जद जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन बेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुकम सब सिद्ध सुवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझान्यो जप काल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज सुमायो मां दाता गुण रवे जैन चकर वह कहायो गुण गावे बलराव ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤ ਪਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰਸੰਗ ਰਹੰਤ ਦੂਰ ਬਾਪਰੂ ਰੰਗਰੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਾ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਕਬ ਕਾ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ
4: ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ।

जन्म मरण दुख जाए, कन हर बूंद बसोरो मावल, कुसम बसंत गनंत ना आवे, रव सस के

0: जन पल उन्हें जोगावे। पले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे।
1: जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो। अंगद कृपा तार अमर सत गुर थेर कीयो, अमरदास अमरत शतर गुर राम है दियो। गुर राम दास दर्शन परसा कहे मथुरा अमृत बैण। मूर्त पंच पर महान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण।
2: अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाखस फारे कर आज, हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत वस्त्र दीन बोसाज, सोदामा अपदा ते राख्या। गनका पड़त पुरह ते काज, श्री सतगुर सुप्रसन्न कल जुग होए। राखो दास पाट की लाज।
3: नाम अवखद नाम आधार, अर नाम समाध सुख। सदा नाम निशान सोहै, रंग रतो नाम स्यों। कल नाम सुर नर बोहै, नाम परस जिन पायो। सत प्रगटयो।

साठ साठ मजन होए। सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अन पौने जा नाम टेक जित भगत अगाणे। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे। एहो राज जोग गुर रामदास,

अमृत छाड बिख बिख खाई माया मो परम पुल सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे।

0: नानक हर पाए हर पाए।
1: श्लोक महला पहला। सिमल रुख सराय राय अत दीर्घत मोच, ओए जे आवे आस कर जाए नरसिकित।

लातूर मुकलावा उर्स काकी काल काई पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज

0: नित जपे हर नाम तेरा वे।
1: श्लोक महला दूजा, एक नहीं आखी दूजे लगे जाए, नानका संकांडिये सदी रे समाए। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, आस क्यों ना किए जे लेखे वरते सोए महला दूजा।
0: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवे पूरिया थाए नकाई पाए। पौड़ जित से भी है सुख पाइए, सो साहेब सदा संभालिए जो किता पाइए अपना। साकाल बुरी क्यों कालिए मंद मुनगे जाए, दे लम्मी नजर निहालिए जो साहेब नाला हारिए। ते बेहा पासा टालिए किचला है ऊपर काली है, ऊपर काली है, ऊपर काली है।
1: किचला है ऊपर काली है, किचला है ऊपर काली है।

जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया तेना सुख सद होई, जिन नानक सतगुर भेटिया तेना मिलिया।

ऐसी बख्श करी जय। ऐसी बख्श करी जय, ऐसी बख्श करी जय, ऐसी बख्श करी जय, ऐसी बख्श करी जय, ऐसी बख्श करी जय। हम भी खक पे करी तेरे, हम भी खक पे करी तेरे, तूने जपत

सतगुर सो मन मनिया, सतगुर सो मन मनिया, सतगुर सो मन मनिया, सतगुर सो मन मनिया। हम भी कक पेकारी तेरे, हम भी कक

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइटिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिंग इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों गैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपे

जो अमृत जल, मैं अमृत जल वरत रहा क्योंकि मैं अंज तक कह देंगा पानी वगदा सी, पर गुरु रामदास कहिंदे ने पानी नहीं हुंदा, हर अमृत पिने लोइणा है। उह सतगुरां दे नेत्रां विचों जो नीर निकलदा सी, जल सी अमृत, उस नाल हजूर दा यह पासा थोड़ा जिहा श्वेत सी जी। हजूर गुरु तेग बहादुर साहब जी दी बाणी च पहली मैं बेनती कीती जी त्याग है, अखीर वाला शब्द जिहड़ा है जय जावंती राग दा, उहदे विच वी सतगुरु त्याग दी गल करदे। पहली बेनती ओ त्याग संसार दा नहीं, ओ त्याग परिवार दा नहीं, ओ त्याग जिहड़ा भारत दी धरती ते पुरातन चलदा सी ओ नहीं। असल च ओ त्याग जो है ओ अंदर दी वासना दा त्याग है। गुरमत ने एक गल कही, संसार मत त्यागो, जिन्हों पान चलो, जे करतार ने संसार नहीं त्यागया तुसी किनू लभण चले। कि परमात्मा ने संसार त्याग दिता? हजूर गुरु तेग बहादुर साहब दा पहला बोल है, अज सची मुची कोई इंसान करोड़ां विचों एक अद्धा बचिया नहीं। प्यारियो, बार मुखी निम्रता मैं भी दिखा देंगा, मन विचों हंकार दे फुरने दी जड़ पट देनी है केवल ब्रह्म ज्ञानी। सतगुरां ने पहला शब्द वरत्या, साधो मन का मान त्यागो। अखीर वाला बचन है, राम भगत ये आन छाड़ देता मन को मान, नानक जन ए बखान जग में विराज रे। जय जावंती राग दा ए आखरी बचन है गुरु तेग बहादुर साहब। पहली मैं बेनती की त्याग, सतगुरु ने कहा कि अपने मन दे मान नू त्याग दे, खंकार नू त्याग दे, अपने आप नू समर्पित कर दे। साधो मन का मान त्यागो। दूसरा काम होर कर काम क्रोध। अगली गल याद रखियो, जे बंदा भेड़े बंदियां दी संगत करेगा नुकसान उहदा काम क्रोध जी नहीं होना। सतगुरां ने कहा काम क्रोध संगत दुर्जन की ता ते ऐन सुभागो, इहदे तो दिन रात दूर रखो। मैं फिर बेनती करा, यह है एक त्याग दा पक्ष जी गुरु तेग बहादुर साहब दा। उंज सतगुरां ने निम्रता च बड़े बोल के देखो गुरसिखो तुहानू भटकन दी लोड़ नहीं। आपां थां थां भजने फिरने अजकल, जिन्नी धरती मैं ईरखा च नहीं कहांगा, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, होर मत ने, जिन्ना इस धरती नूं गुरु नानक साहब दी जोत ने अपने चरणां नाल नवाजिया किसे पैगंबर ने नहीं नवाजिया। जिन्ना गुरु नानक साहब दी जोत ने बख्शिश कीती ते जिथे उन्हां दे चरण पै गए। मैं फिर वरत्या सी इट ला के कहिंदा इतिहास कथा बोर्ड ला दिता, नहीं, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोहा, सिद्ध आद आसन सब जगत दे नानक आद मते जे कोवा, ते उस चरणा दी बदौलत है कि महाराज ने कहा घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोवा। अर्ज कहे सतगुरां ने देखो क्या मन दा मान त्याग दियो। फिर निम्रता च सानू समत देने लई एक श्लोक है उन्हां दा, जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो ना मन को मान। किड्डे बचन कह, अपने ते झुका के क्या मैं बड़े जतन किते ने मन दा अहंकार निकल जाए, ते ए एडी भैड़ी बीमारी है बोले भी ना बंदा, सिर्फ फुरना उठन दी देर है, मैं आ चंगे कर्म कर रहा। अगले दिन तुसी रिजल्ट देखियो, जिवें दुध च पाई कांजी दुध फट जांदा है। सच ए वे अहंकार दा फुरना अंदर दे जीवन नू फटा देंदा। सतगुरां ने कहा जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो ना मन को मान, ते जे मन का मान ना मिटिया ते गुरमत किथे होनी। दुरमत स्यो नानक फदियो राख लिखो भगवान। होर भी एक बचन, तीर्थ बरत अर दान कर मन में धरै गुमान, नानक निफल जात ते ज्यो कुंचर स्नान। मैं सिर्फ अज सतगुरु दी बाणी चो आप नाल बेनती करनी। पहला भी इथे जिहड़ा त्याग है आनी संसार दा त्याग, इथे अपने अंदर दी मैं मेरी नूं मिटा देना। एक घटना जिहड़ियां सतगुरां ने छे बख्शां कीतियां, क्योंकि अज बड़ा घट जिक्र करने, चार धूने ते छे बख्शां। ओ जिहड़े महाराज ने बख्शां कीतियां, इहदे विच एक बख्शिश गुरु तेग बहादुर साहिब दी मन नूं मिटाण लई, मैं नूं मिटाण लई। महाराज तमतान साहिब सन, उत एक सिख, वैसे उहदा हिस्टरी च नाम लिखिया भाई रामदेव जी, उहदा उहने देखिया महाराज दी सेवा की करनी। प्यारियो, आपां तां सेवा मंगने हां ना जी, सानू इह सेवा बख्शो। चेते रखियो जिहड़ा सेवा मंगण गया उहनू सेवा दा पता नहीं। सिख

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue North East Calgary।

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ग्रोसरी बकेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दी एप ग्रोसरी बकेट्स तो तुसी घर बैठे ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो। इना कोल 450 तो वध ग्रोसरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल ने। ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋਸਰੀ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰੋਸਰੀ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 587-333-9091 587-333-9091 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

खास करके तबला वादक दे नाले दा संबंध है, यह हदायत है महाराज दी। इन्हां चीजां दा असां ध्यान रखना, जदों बाणी दा गायन करना उदों राग दा भी ध्यान रखना है, घर दा भी ध्यान रखना है। अगे मंगला चरण है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमेश्वर एक है सदीवी होंद वाला, वो सदीवी सच है जिदे बारे आपां बाणी चो पढ़दे हां, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उस सच की समझ, उस सच का ज्ञान गुरु की कृपा के नाल

0: सारी खेड तां वापरेगी जे परमात्मा कृपा करे। आप करता करे सो योही करन वाला, आप दे जे आप इस तरह की कृपा करदा, इस तरह की दा देंदा तां ही मनुख नूं ए चीज की प्राप्ति हुंदी है।
1: हर जीओ कृपा करे ता नाम ते आईऐ जीओ।
0: एक बार फिर महाराज पहले बंद की अखीरली पंक्ति दे विच गल चेते करवा रहे ने, दृढ़ करवा रहे ने, भाई जे हरी कृपा करे ता परमात्मा दा नाम ते आया जा सकदा। गुरमुख प्यारे आप कृपा लेनी है गुरु दी, अरदास करनी है महाराज कृपा बनायो, सतसंगत हुंदी रवे, कृपा करियो अमृत वेला संभाल दे रहिए, कृपा करियो तुहाडे गुण गाउंदे रहिए। और जदों आप कृपा दी अरदास करांगे ना, इहदे नाल हौमी नहीं आएगी। जे तुसीं इह नहीं कहोगे तुहाडे अंदर हो सकदा अमृत वेले जागण दा हंकार भी पैदा हो जाए, हो सकता तुहाडे अंदर नाम जपण दे इक ईगो भी आ जाए भी मैं तां इन्ना नाम जपदा, वह परवाह नहीं है। इसे करके तो गुरु तेग बहादुर जी ने वचन किए सन, तीर्थ वर्त अर दान कर मन में धरै गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। वह सारे ते महाराज ने कट मारता जे गुमान आ गया। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आईया जियो। महाराज कहिंदे जे हरी परमात्मा कृपा करे ता ही मनुख सहज विच आके उस प्रभु परमात्मा दा नाम त्या सकदा है।
1: अंदर साचा नेहो पूरे सतगुरै जियो।
0: देखो जी दे अंदर, जिस जीव दे अंदर सच्चा नेहो पैदा हो गया। दो तरह दा नेह, एक कूड़ा नेह है जिहड़ा आपां संसार नाल ला बैठदे हां, जिहनूं महाराज कहिंदे कूड़ राजा, कूड़ परजा, कूड़ संसार। उत्थे ना बचन कीते ने कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार, नाशवंत मनुख दा नाशवंत पदार्थां नाल नेह लग गया, वह नेह किसे काम दा नहीं है। इत्थे है अंदर सच्चा नेहो, जिहदे अंदर सच्चा नेह परमात्मा दा प्रेम पैदा हो गया, पूरा सतगुरु है जियो, सतगुरु पूरे दी कृपा दे नाल इह खेड वापरदी है। सतगुरु जदों कृपा करदा है मनुख दे अंदर कूड़ा नेह खत्म हो जांदा है, सच्चा नेहो बन

0: नदर करे, जे परमात्मा नदर करे, परमेश्वर वाहिगुरु नदर करे, ता सतगुरु का मिलाप हासिल हुंदा है। गल्लां दोवें ओत पोत ने। सतगुरु का मिलाप प्रभु कृपा नाल हुंदा है, गुरु की कृपा नाल प्रभु की सोझी आउंदी है। ता सतगुर मेले जदों सतगुरु का मिलाप हुंदा है, गुरु सोझी देंदा है, समझ देंदा है, फिर ऐसा मनुख विवेक बुद्धि का मालक हो जाता है। फिर वह विवेक बुद्धि के नाल ही दिन रात विचरदा है। आप रोज सतगुरु के चरणों से अरदास भी करते हैं ना, भी सिखां नूं सिखी दान, केश दान, रह दान, उत्थे विवेक दान का खास जिक्र आउंदा है। चंगे ते माड़े दी, सच्चे ते कूड़े ने उहदी समझ आ जाए, यह भी मंगिया करो। विवेक की घाट है, विवेक का दीवा साडा मैला होया पिया, शायद इसे करके बहुत सारिया चीजा जिहड़ियां समझण वालियां ने वो साडी समझ विच भी नहीं आ रही। जदों विवेक बुद्धि प्राप्त हुंदी है, विवेक बुद्धि दे नाल मनुख फिर संसार विच विसरदा है।
1: अंदर साचा ने हो पूरे सतगुर,
0: अंदर सच्चा ने हो, एक बार फिर महाराज वचन करदे ने पूरे सतगुरु प्रति और सच्चा

0: महाराज कहिंदे भाई बड़िया भागां दे नाल सतसंगत की प्राप्ति हुंदी है। अज इत्थे आपां बैठे हां इह कोई पूर्वले चंगे कर्मां दा फल मिल रहा है, यह कोई बड़िया भागां दा फल मिल रहा है, बड़िया भागां नाल ही सतसंगत पर असीं पता की समझदे हां, जिहनूं पैसा मिल गया, जिहनूं शोहरत मिल गई, जिहनूं कोई इस तरह की चीज, आपां कहिंदे बड़िया भागां वाला आ बड़िया भागां की निशानी है। बड़िया भागां तो बिना सतसंगत प्राप्त नहीं हुंदी, सतसंगत विच बैठण दा सुभाग नहीं मिलदा। सत संगत मिले बड़भाग, क्योंकि जदों सतसंगत विच बैठ गए इत्थे जो बाणी दी विचार है गुरु दी मत दा विचार होवेगा तां जाके हर रस आवे जीओ। वो जिहड़ा श्रेष्ठ रस है जिथे जाके सारे रस तुहानू कूड़े लगणगे फिके लगणगे, और ये परमात्मा का रस जेड़ा है नाम का रस है सब श्रेष्ठ है। इहदे सामने जिन्ने भी दुनिया के रस ने सब फिके पै जाते हैं। साढ़े कोले बहुत सारिया घटनावां ने, बहुत सारे जिहड़े इस तरह इशारे दिते गए ने, जिवें बाबा फरीद साहब के जीवन चों पढ़दे हां आपां, उन्हां तां कहा सी ना सक्कर खंड निवात गुड़ माख्यो माझा दुद्ध सबा वस्तु मिठियां रब न पुजन तुद्ध। ओ अवस्था है, उस अवस्था ते जाके सारे रस फिके लगते ने, परमात्मा दा नाम दा रस प्राप्त हुंदा। ए खेड सतसंगत दे करन दे नाल वापरदी है।
1: आन दिन रह लिव लाए ता सहज समावाए जीओ।
0: जदों आन दिन मनुख परमात्मा विच लिव लाउंदा है ता सहज विच ओदी अखीर जिहड़ी है समाई हो जाती है। सहज विच समाउणा, जीवन दे विच सहज आ जाना, पर इहदे लई परमात्मा विच लिव लाउणी पैणी है। लिव तो बिना इह अवस्था प्राप्त नहीं हुंदी। जिन्हां नूं इह अवस्था प्राप्त होगी उन्हां दी लिव परमात्मा नाल लगी रहिंदी है, भावें कोई उन्हां नूं आरियां नाल दुफाड़ करदे फिर, भावें कोई चरखड़ियां ते चाड़ दे, भावें उन्हां दा शरीर तूंबा तूंबा कर दे, उन्हां दी लिव नहीं कोई तोड़ सकदा। ਇਹ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
1: ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸਦਾ ਅਤੀਤ ਬੈਰਾਗੀ।
0: ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ। ਸਦਾ ਅਤੀਤ ਵੈਰਾਗੀ, ਉਹ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਵੈਰਾਗੀ ਐ ਨੀ ਵੀ ਘਰ ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਿਆਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।

0: भी श्लोक पंजवें पातशाह जी की रचना चो उच्चारण होया। दुर्जन का अर्थ वैसे संस्कृत का शब्द है माड़ा, दुर हुंदा बुरा, माड़ा जन हुंदा मनुख, माड़ा मनुख भैड़ा मनुख। इथे दे अर्थ किवें ने इह अगले श्लोक दे विच सारी गल महाराज कहणगे, हे दुर्जन तू जल जा, तेनू अग लग जा, तू जल जा। अगे लिखिया दुर्जन तू जल पहाड़ा, बेछोड़े मर जा, बिछोड़िया तू भी मर जा। सतगुरु सचे पातशाह किस कंसैप्ट च गल कर रहे ने, सुनियो जी।
1: कंता तू सौ से जड़ी, मैडा हब्बो दुख उलाहे।
0: कंता दा मतलब है परमात्मा रूपी कंत, परमेश्वर रूपी कंत, क्योंकि असि सारे जीव रूपी स्त्रियां हां। इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सवाई। महाराज ने बचन की कंता तू सौ से जड़ी, मेरे हिरदे रूपी सेजा दे उपर आ। ते महाराज कहंदे हब्बो दुख उलाहे, तू मेरी सेजा दे उपर आ, हिरदे दे हिरदे रूपी सेजा दे उपर आ। और ए बेनती कीती है जीव रूपी स्त्री ने परमात्मा रूपी पति दे चरणां दे विच।

0: तू ही सारा संसार सृजिया, सारी सृष्टि तू ही पैदा कीती है।
1: तेरी कुदरत कोई न जाने, मेरे ठाकुर सगल राण।
0: अगम शब्द परमात्मा लई वरत्या, अगम अगाद पारब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता हो, जिवें आपां सुखमनी साहिब चो पढ़दे आ। इस करके इत्थे कहिंदे ने तेरी कुदरत कोई ना जाने, तेरी कीमत कोई नहीं जान सकता, ये सब कुछ दी कुदरत है। मैं आश्चर्यता भी चला जाना, तू आश्चर्य कुदरत तेरी बिस्मा वाले बचन, तेरी कुदरत कोई ना जाने, मेरे ठाकुर सागल रौने, सारे पासे तू रविया होया है।
1: तुद अपड़ कोई ना सके, तू अविनाशी जग उदरण।
0: तेरे तक कोई भी अपड़ नहीं सकता, तू अविनाशी है, तू सारे दा जीवन बेड़ा पार।

0: तेरा खेड है, तू ही ये बनाया, पर तू ए आप नहीं है, तुझ लेप ना लगा, त्रिण लेस मात्र भी, त्रिण मात्र भी तू ए नहीं है, पर आवागौन दी खेड तू ही बनाई है।
1: जिस हो वह आप दयाल तिस लावह सतगुर चरण,
0: जिदे ते तू आप दयाल हो जाना सतगुरु दे चरणा नाल।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह के मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर की जानकारी लई पिछले 33 सालों तो गैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन लई तुसी पॉल सेखों जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे

0: ਸਟਰੋਂਗ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਬੇਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਊ ਪਾਇਲਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: दीनानाथ सुनो,

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: ठाकुर गाइए आत्म रंग।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मरिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स सोफे लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशन तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करते ने। इना दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इना दी दूजी लोकेशन दा पता है 71718 Avenue North East कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

दारू सुख रोग मया जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात में जो

राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव, मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहा। हर जन केवड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्तास, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत, जित हर रस पाया। मेल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चितवह उद्दम, जा हर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जंतु पाए, ताका रिजक आगै कर धरया। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सुखी काष्ट हरिया रहा। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोय न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भउ करिया। उडे उडे आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कमन खलावै कमन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। सब निदान दस अष्ट सिदान,

जब लो नहीं पाग लीलारी उदय, तब लो भ्रमती फिरती बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछताया। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। गुरु पारस हम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गाड़े सोहया राम, काया गाड़े सोहया मेरे प्रभु मोहया। क्यों सास गिरास विसारिये, अदृष्ट गोचर पकड़िया गुर शब्दी। हो सतगुर कै बलिहारिये, सतगुर आगे सीस भेट देओ। जे सतगुर साचे भावे, आपी दया करो प्रभ दाते। नानक अंक समावे, सतगुर आगे सीस भेट देओ। जे सतगुर साचे भावे, आपी दया करो प्रभ दाते। नानक अंक समावे, सुख टल गुर सेविए। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसय गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसामदी। नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह। सिरशां दशाह, जिस पास बैठियां सोहिया। सबना दावी साहो, सज्जन सच्चा पातशाह। सिरशां दशाहो, जिस पास बैठियां सोहिया।

सचै सचे के व्यापारी। भूख प्यासो आथ क्यों दर जैसा जियो। सतगुर पूछो जाए नाम त्याय साजियो। सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन अनदिन नाम वखाणा। करणी कार तुरहों फुरमाई आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी। करणी कार तुरहों फुरमाई आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।